पीछे की है गाड़ी ले दू टोली ला के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाए बा।

सुबह से शाम हुई और हरण मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। एक झलक दे के जो गुम होता है वो पेड़ों में, मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है, वो नजर रखता है मुझ पर, मैं उसे आंख से उछलने

सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शो हरन को नेजे की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होगा। दिन मगर ढलने लगा है।

0: जमिनीसारखी गुंतवणूक नाही आणि गुंतवणुकीसाठी आज सारखी संधी नाही. होय, क्रेडाई नाशिक मेट्रो घेऊन येत आहे नाशिकच्या इतिहासातील पहिला सर्वात मोठा क्रेडाई प्लॉट एक्सपो 2026. एन ए रेसिडेन्शियल प्लॉट, एन ए कमर्शियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट, फार्म हाऊस प्लॉट अँड विलास, अग्रिकल्चरल लँड चे भरपूर पर्याय. नक्की भेट द्या 13 व 14 जून सकाळी 10:30 ते रात्री 8:30 मनोहर गार्डन, ट्रीट हॉटेल, गोविंद नगर, नाशिक. 788-789-89.
1: मेलोडियस कराओके क्लब उदय बापू पाटील घेऊन आले आहेत सदाभर हिंदी आणि मराठी गीतांचा कार्यक्रम द म्युझिकल लेगसी. जरूर या दिनांक 9 जून 2026 रोजी संध्याकाळी ठीक 5 वाजता. ठिकाण महाकवी कालिदास कला मंदिर नाशिक. जरूर या आणि या बहारदार मैफिलीचा आनंद घ्या. प्रवेश विनामूल्य. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत ऑप्टिमस हॉस्पिटल डॉक्टर प्रकाश पाटील, सोपान हॉस्पिटल डॉक्टर संजय वराडे, प्रवीण कुलकर्णी, अनिल पोटे, हॅलो बेकर्स, परिवार गिफ्ट आणि वाझट मोबाईल.
2: हॅलो,
3: नमस्कार मॅडम, मी चिमरी कुरासा कॉलरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ.
2: जी नमस्ते सर.
3: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ. ड्यूटी करे हूँ मैडम. कल पानी यहाँ गिरा है और आज हिम्मत गर्मी है और वही थोड़ा सा कहीं कहीं बादल किया है. हवा भी चलती है, पुल भी चलता है और दिशा मूर्ति मंडल के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ. फिल्म का नाम है सर और गीत की बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सानी.
2: अच्छा,
3: और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को रेडियो विश्वास से जुड़े सभी लोगों को आपके परिवारजन को रिश्तेदारों को आपके फैमिली को और हाली उत्तर रेडियो समय ग्रुप में जुड़े श्रोता को विश्वास रेडियो में सभी बहनों को और स्टाफ कर्मचारी को सभी को पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को डिवेट करो मैडम. गीत को सुना दीजिएगा. धन्यवाद.
2: जी जी शुक्रिया सर.
3: जी मैडम.

0: हेलो नमस्ते।
1: बोला
0: हाँ जी, योगेश जांगड़े पे मैं सर, छत्तीसगढ़ से।
1: जी नमस्ते सर, बोलिए।
0: बढ़िया है, अच्छे हैं
1: जी। अभी बारिश चालू हो गई?
0: नहीं हुआ है।
1: तो अभी गर्मी है?
0: हाँ जी।
1: अच्छा, कैसा रहा मौसम?
0: बहुत गर्म है।
1: क्या करते हैं आप?
0: खेती बाड़ी काम है हमारा।
1: क्या उगाते हैं फिर खेती में?
0: अभी धान लगाएंगे, बारिश होगा तो।
1: तो अभी कुछ नहीं था? दो महीने
0: अभी 2-3 महीने खाली था, वो अप्रैल में गेहूं की कटाई किए हैं तो उसके बाद खाली रहता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो गेहूँ बाहर भी बेचते हैं या सिर्फ खुद ही खाने के लिए?
0: नहीं नहीं बेचते हैं।
1: देखते हैं
0: जी।
1: तो कहिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गंगा जमुना सरस्वती से सुनवा देंगे, साजन मेरा उस पार है।
1: अच्छा जी, जरूर जरूर सुनवाएंगे।
0: धन्यवाद
1: जी, शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हाँ बोला।
0: हाँ, रेडियो विश्वास।
1: हो, रेडियो विश्वास बोला।
0: आपकी पसंद में नाव द्यायचं होतं।
1: हो सर, सांगा ना।
0: जनार्दन बराटे, जेल रोड, नाशिक रोड।
1: बर बर बर, बोला।
0: आशिकी।
1: अच्छा,
0: तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है।
1: बर बर बर सर, पहिल्यांदाच फोन केलाय का आपण?
0: हा, पहिल्यांदाच ट्राय केला मी।
1: बर, अच्छा, आणि काय करता आपण?
0: मी रिटायर्ड आहे।
1: बर बर बर, अच्छा, ठीक,
0: थँक्यू।
1: हो, चालेल, धन्यवाद।

0: वक्त को क्यों खोता है, ये गुलाबी मौसम है, वक्त को क्यों खोता है।
1: जिस्म हो जब बाहों में दर्द उड़न छू होता है,
0: प्यास मचल कर बोली इश्क को मारो गोली,
1: प्यास मचल कर बोली इश्क को मारो।

0: आपण लग्न कधी करायचं?
1: अगं गौरी, लग्न तर करूच, पण त्यानंतर तू टिपिकल बायको सारखे तर नाही वागणार ना?
0: आणि तुझं काय, आपल्यातली मैत्री लग्नानंतर पण अशीच राहील ना?
1: मग आता पुढे काय करायचं?
2: आता काय करायचं ते मी सांगते. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ यांच्या संयुक्त विद्यमानं घेऊन आलो आहोत तेरे मेरे सपने, हे विवाह पूर्व समुपदेशन म्हणजेच प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग.
1: पण मग संपर्क कुठे करायचा?
2: अगदी सोपंय, रेडिओ विश्वासच्या ऑफिसला सोमवार ते शनिवार सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत तुम्ही नक्की भेट देऊ शकता. किंवा अधिक माहितीसाठी जरूर संपर्क करा 8300016512 आणि 0253 247 2626 या क्रमांकावर.
0: हे छान झालं, म्हणजे लग्नानंतर सुखी संसार कसा करायचा याचं ट्रेनिंग आताच मिळणार.
1: चला म्हणजे माझी सुटका झाली.
3: हॅलो,
4: नमस्कार मॅडम, मी चिमरी कुरासा कॉलरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ.
3: जी नमस्ते सर.
4: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ. ड्यूटी क्रेड हूँ मैडम, कल पानी है गिरा है और आज हिम्मत गर्मी है और वही थोड़ा सा कहीं कहीं बादल किया है, हवा भी चलती है, पुख भी चलता है. और दिशा मूर्ति मंडल के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ. फिल्म का नाम है सर, और गीत बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सानी.
3: अच्छा,
4: और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को, रेडियो विश्वास से जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी फैमिली को, और हाली उत्तर रेडियो समाज ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, विश्वास रेडियो में सभी दोस्तों भाई बहनों को और स्टाफ कर्मचारी को, सभी को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को निवेदन करो मैडम, गीत को सुना दीजिएगा. धन्यवाद.
3: जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया
4: जी मैडम.

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते। हाँ
0: बोला
1: जी, योगेश जांगड़े पे मैं, सर छत्तीसगढ़ से। बढ़िया
0: जी। नमस्ते सर, बोलिए
1: है, अच्छे हैं।
0: जी। अभी बारिश चालू हो गई
1: नहीं हुआ है।
0: तो अभी गर्मी है।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, कैसा रहा मौसम?
1: बहुत गर्म है।
0: क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी काम है हमारा।
0: क्या उगाते हैं फिर खेती में?
1: अभी धान लगाएंगे, बारिश होगा तो।
0: तो अभी कुछ नहीं था? तो मैंने
1: अभी 2-3 महीने खाली था, वो अप्रैल में गेहूं की कटाई किए हैं तो उसके बाद खाली रहता है।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो गेहूँ बाहर भी बेचते हैं या सिर्फ खुद ही खाने के लिए?
1: नहीं, बेचते हैं
0: देखते हैं।
1: जी।
0: तो कहिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गंगा जमुना सरस्वती से सुनवा देंगे, साजन मेरा उस पार है।
0: अच्छा जी, जरूर जरूर सुनाएंगे।
1: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो, हाँ बोला।
0: हाँ, रेडियो विश्वास।
1: हो, रेडियो विश्वास बोला।
0: आपकी पसंद में नाव द्यायचं होतं।
1: हो सर, सांगा ना।
0: जनार्दन बराटे, जेल रोड, नाशिक रोड।
1: बर बर बर, बोला।
0: आशिकी।
1: अच्छा,
0: तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है।
1: बर बर बर सर, पहिल्यांदाच फोन केलाय का आपण?
0: हा, पहिल्यांदाच ट्राय केला मी।
1: बर, अच्छा, आणि काय करता आपण?
0: मी रिटायर्ड आहे।
1: बर बर बर, अच्छा, ठीक,
0: थँक्यू।
1: हो, चालेल, धन्यवाद।

मैं सुधर गई थी कि ना तुम कभी आओगे और न मुझे कभी बुलाओगे, पर तुमने मुझे बुला लिया। तुम मुझे नर्तकी नहीं समझते हो ना, धन्य हो गोपाल, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी नजर से देखा है, समाज की नजरों से नहीं देखा। कितने अच्छे हो तुम, ये चाहता है अपने आप को तुम्हारे चरणों पर निछावर कर दूं। सुना तुमने, हम दोनों की बात गांव भर में फैल गई है, तुम्हें तो मालूम भी नहीं लोग हमारे बारे में कैसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे और तुम्हें

तुमने अपनी आवाज बाली गोपाल, तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिली। हाँ, आज देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की पसंद बाहर का।